0: क्योंकि मेरी सिस्टर और मैंने 7 ईयर्स से अपना घर संभाला था जब हमारे पापा यहाँ से चले गए थे, इज़ू में से एक्सपायर हो गए थे. हमने सब चीज़ें हैंडल करी थी साथ में मिलके, तो इतने हम मेंटली स्ट्रांग हो चुके थे कि हम ये सब उल्टी सीधी कदम नहीं उठाएंगे. और दूसरी बात यह है कि मेरी जो सिस्टर है उसको 2.5 महीने से उनके जो ससुराल वाले हैं वो हरदम ये उनको ब्लेम किया करते थे, उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड की जो सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड की जो सिस्टर है वो, कि आप अपने घर से तो अपने घर से कुछ भी लेके नहीं, सामान हमारे सामान को ऐसे बोल रही है, मतलब आप तो अपने घर से कुछ लाए नहीं हो तो हमारे सामान को ब्लेम मत करो, कि हमारे सामान को हाथ मत लगाओ और अपने घर से लेके आओ कुछ ना कुछ. और शादी से पहले ये सारे मतलब कि अपने आप को क्लीन चिट दे रहे थे कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत अच्छे हैं और हम किसी भी चीज़ के मतलब कोई भी हम आपसे उम्मीद नहीं रखते हैं. और उसके बाद ये सब चीज़ की डिमांड करने लग गए एक तरीके से, कि हमको पैसे भी चाहिए, हमको सामान भी चाहिए, सब चीज़.
1: लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी आकृति के साथ हमें, और आकृति का मेंटल कंडीशन क्या था, उन्होंने क्या बोला आपको?
0: एक्चुअल में मेरी जो सिस्टर के ऊपर हाथ उठाया जा रहा था वो जो है वो मेरे को नहीं बताया गया था. मेरे को इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि जो मेरी मतलब मेरी जो मम्मी थी, मेरी मदर जो थी, उनको ये सब चीज़ जो है मेरी सिस्टर ने एक बार बीच में बताया था. तो मेरी मदर ने उनको, उनके हस्बैंड वगैरह सबको समझाया था बेटा कि ऐसे कुछ नहीं होता ये वो. फिर जब ये 2-3 बार उसके बाद अभी हाथ उठाया गया तो उसने मेरी मम्मी को मतलब मेरी मदर को कुछ नहीं बताया. तो मेरी मदर ने मेरे को कुछ दिन बाद मतलब अभी 3 तारीख को जब मैं घर पर आया, तो हम अभी 6 तारीख को यहाँ से गाँव के लिए निकलने वाले थे, अपने विलेज जा रहे थे कुछ काम से, तो उन्होंने बोला कि आप जो हैं मेरी मम्मी मेरे से बोल रही हैं कि आप एक काम करो दीपू, हम तो गांव चले जाएंगे तो मैं तेरे को एक बात बताती हूँ, किसी को मत बताना. और उनने ये सब बताया मेरी मम्मी को कि मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि जैसे कि आपकी जो सिस्टर है उसको ऊपर हाथ उठाता है, उसका पति ऐसे करता है वैसे करता है, तो दीपू जब चल के एक बार बात करते हैं 6 तारीख को हम जब गांव जाएंगे उससे पहले उनके घर में, तो ऐसा वैसा कुछ होना नहीं चाहिए और मैं तेरे को बताया नहीं क्योंकि तू टेंशन लेगा, इसलिए ऐसे करके मेरी मम्मी ने मेरे को जब बताया तो उस टाइम मैं बहुत प्रेशराइज हो गया, दिमाग से मेरे को बहुत गुस्सा सा आने लगा. तो मैंने बोला एक काम करो, इतना लेट करके आप तो वैसे ही लेट कर चुके हो, तो अभी कॉल लगाओ. उनने कॉल लगाया उनके घर पे, हमने इन सब चीज़ इन्फॉर्म किया. इन्फॉर्म करने के बाद ये सब चीज़ तभी से स्टार्ट हो गई इनके घर में, मेरी बहन को और ज़्यादा गाली देना और ज़्यादा हराश करना. उसके बाद ये जब हराश हो गई हद से ज़्यादा, तो ये जब ऑफिस गई तब भी इसको हराश करा गया, ऑफिस के लिए भी अटकाया गया. शादी से पहले इनने बोला था कि मैं ऑफिस करूँगी, ऑफिस जाऊँगी, जॉब करूँगी, मैं इंडिपेंडेंटली रहूँगी, मैं अपने ब्रदर को हेल्प करूँगी. और जब नहीं जाने दिया गया तो मेरी सिस्टर ने बोला ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, बट आप जॉब पे जाओ, मींस उनके हस्बैंड अरस्तु, बट वो भी जॉब पे जाने को राजी नहीं. उनका कहना ये था कि मेरे जो पापा हैं वो सेक्शन ऑफिसर हैं, उनके बहुत बढ़िया सैलरी है, मैं तेरे को बहुत खुशी में रख रहा हूँ, मतलब हमारे मेरे पापा के पैसे तो आ रहे हैं, हम उड़ा रहे हैं, तो मैं भी उड़ा रहा हूँ तू भी उड़ा, मतलब हमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनका कहना ये था. और मेरी सिस्टर का कहना ये था कि हम बेबी प्लान करते भी हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको मैं क्या जवाब दूंगी कि आपके फादर क्या करते हैं क्या नहीं करते, या फिर इन फ्यूचर मैं अपना फ्यूचर कैसे देख लूँ मैं आपके साथ अगर आप कोई जॉब नहीं करते तो अगर आप जॉब नहीं करते हो फिर आप भी घर पर रहोगे, मैं भी घर पर रहूँगी, अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ होके कि घर पर साथ में रहेंगे इतने लॉन्ग टाइम तक तो हरदम लड़ाई होगी, तो आप जॉब पर इनको जॉब जाने की बात आई तो ये पहले अटकाने लगे, फिर जब इनने घुमा फिरा के हाँ भी करी तो ये चाहते थे कि ये जॉब पे ना जा सके, ऐसी सिचुएशन ही बार बार क्रिएट करते रहे.
1: एक डाउरी हैरेसमेंट डेथ का केस दर्ज हुआ है और हम इसको लगातार ट्रैक करेंगे. त्विशा शर्मा केस के बाद दिस इज़ द स्टोरी दैट हैज़ कम बिफोर अस हियर ऑन NDTV एंड दैट्स द रीज़न वाई वी डिसाइडेड टू पुट अ स्पॉटलाइट ऑन इट, नॉट इन सम रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री बट इन द हार्ट of India's national capital in Lodhi colony. There is a sense of disbelief दैट समथिंग लाइक दिस कैन हैपन. अमय सुतार, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड रिमेंबर, मैरिटल अब्यूज डजंट चूज स्ट्रैटा, इट डजंट चूज कम्युनिटीज, इट डजंट चूज वेयर पीपल कम फ्रॉम, हाउ रिच दे आर एंड वॉट दे प्लान टू डू. आई स्पोक टू अ फॉर्मर फिल्म स्टार who has spoken out now for the first time about the grievous abuse that she faced and is facing in her marriage right now. Selena Jaitley with me right here on NDTV. She's someone who left to pursue other priorities, her personal life, at the peak of her fame and fortune in the film industry. It's not something you see very often. And all the years since, we've hardly heard from her. Now she's ready, not for a comeback, but for something of a homecoming. She needs no introduction, and that may actually be the most cliched way to introduce someone, but Selena Jaitley genuinely needs no introduction. Selena, it's good to see you here.
2: So very kind of you.
1: I know it's been a difficult few years for you. You're yes. still in the middle of that storm.
2: Yes.
1: But I am so happy to hear that you're back with a movie. Your fans, you know, you had very consciously decided to stay away from the industry, loved and embraced for, you know, to get married and start a family. But now you're back with a film called Sister Nivedita. I'm going to get into that in just a bit. But why did you decide now? Why have you come back to the film industry?
2: You know, sometimes in life, a lot of people are faced with circumstances which break you and leave you no option but to start all over again. My craft is what has stood by me through all my agonies and ecstasies of life. And I think this is my way of rescuing myself through my craft, because this is what I know best. I'm left in a situation in life where I have no option but to move forward full throttle. I can either give up and die, or I can turn to something that can heal me, and in turn see a person who should be known to today's generation.
1: Why are you broken? You know, this sounds like this movie is almost a lifeline for you personally, Selena.
2: Yes.
1: Why has it gotten to this point for you?
2: You know, we all take decisions in our life which we feel are in the best of our interest, Shiv. And in my case, I thought giving it all up at the peak of my career, because I thought I had met a perfect life partner. And I was blessed with the most perfect children. I can't tell you how beautiful that was.
1: Yeah.
2: But, you know, having personal accomplishments does not protect you from violence. Having a public image does not protect you from private erosion. Having a degree, a great degree, does not protect you from gaslighting. And I eroded privately in the kind of relationship I was. But equations change when children come into the picture.
1: Yeah.
2: Your parents pass away. You know, there are things in a human being's life which change them completely from the best version of themselves. The first is the death of your father and mother. The first is the death of your child. Having to rebuild your life again overnight, okay, and actually finding out that it is just you who are there. No one is going to come and rescue you. And that's what happened with me, and it happens with, I'm not the only one. I'm just telling my story that if today on your show someone can relate to it and find some comfort or hope from it. So these are the things which change you and transform you. And I gave it all up thinking, this is what I want. I want a house full of kids, a family full of love, the kind of family I grew up as a 4G kid, a 4G granddaughter. And the kind of upbringing that I had in the armed forces, marriage was very sacred. Marriage was valued. Marriage was difficult. And marriage was fought for on a daily basis. एंड आई ब्रॉट दोज वैल्यूज विथ मी

0: Well, Jack, in the latest updates coming in at this hour, now a month after the allegations first surfaced, the Ram Temple Trust met in Ayodhya and took a series of key decisions. Now, the trust accepted resignations of General Secretary Champath Rai and Trustee Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. The trust also announced the appointment of Chief Executive Officer. A three-member panel will now select the CEO. The trust strongly defended Champath Rai, calling his conduct an example of maturity, and even went on to say that there was magnanimity in his decisions. The trust also made the interim SIT report public. The report fixes supervisory accountability on former trustee Anil Mishra, alleging that he failed to ensure the effective implementation of security protocols inside the temple.
1: I can talk about Champath Rai. I know Champath Rai for 32 years. And their mistake is that they have अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया. उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था. तब से यहां पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है. इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं. इस बात को ध्यान में लीजिएगा. हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं. उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस. जब ये त्याग पत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है. अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए. ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया. उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा

0: गई सेवा का अभिनंदन भी किया।
1: ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन तीन लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को तीन नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन तीन नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी।
2: स्वीकार हो गया, सोना चांदी मारा बताए थे, वो सोना चांदी सब साबित होगा, सब है, सुनिश्चित है।
3: We're talking more updates coming in on this story at this hour. Now, a big political storm has broken out over the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. Barely hours after it accepted resignations of Champat Rai and Anil Mishra. Calling them piecemeal resignations, Congress's Pawan Khera demanded that every member of the trust be probed. Khera further said that the responsibility must be fixed right up to the Prime Minister, Prime Minister Modi. Meanwhile, UP Congress Chief Ajit Rai is naming names demanding action against the Treasurer Govind Giri and Gopal Rai as well. The Samajwadi Party has also joined in, with leaders asking who will ultimately be held accountable for the trust functioning. The BJP, however, said the trust decision is its own, insisting that this is a matter of faith which should not be politicized.
4: ये निश्चित तौर से हम सब की जीत है, देशवासियों की जीत है, सनातनियों की जीत है, क्योंकि ऐसे चोर लोग जो भगवान का चढ़ावा का पैसा खा रहे थे, और इसमें दो ही नहीं अभी बाकी हैं, इसमें गोविंद गिरी जो उसके कोषाध्यक्ष है, बिना ट्रेजरार के जानकारी में पैसे कैसे चोरी होगा। गोविंद गिरी का इसमें इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए। और जो उसमें राव है, वो गोपाल राव, उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और नीपेंद्र मिश्रा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये निश्चित तौर से आज जो हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, हम लोगों की जीत है।
5: So all those people who are defending the actions of Champat Rai and the trust, will they admit that this acceptance of their resignation is an admission of guilt? The fact that there was dacoity in the trust stands proved today, endorsed today by these resignations. But the fact of the matter is that people who are replacing these people do not have a very clean track record.
6: करोड़ों उन मूल निवासी हिंदुस्तानियों की जो भारत से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं, किसी भी दुनिया के हिस्से में रहते हैं, उनकी आत्मा को, उनके जज्बात, उनकी भावनाओं को जो ठेस और सदमा पहुंचा है, उसकी तलाफी, उसकी भरपाई का होना मुश्किल है।
7: बड़े पैमाने पे सोना चोरी हो गया है, चांदी चोरी हो गई है, लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे चढ़ावा जो किया है वो सब गया कहाँ? उसका पहले जांच तो करो ना, उसका ठीक जांच ही नहीं होगा, सब मिली जुली भगत है। ऐसा मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि सोमनाथ का मंदिर कितने लूटा आपको मालूम है? सोमनाथ का मंदिर गजनवी ने लूटा। गजनवी कौन था? राजा था। और राजा लूटने के लिए नहीं गया, उसके सैनिक गए होंगे, उसके लोग गए होंगे। अभी इस देश का राजा कौन है? मोदी जी, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना।
8: आज ट्रस्ट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लेकिन ये बड़ी सुखद बात है कि जितने भी निर्णय लिए गए वो सर्वसम्मति से लिए गए। चंपत जी और अनिल जी का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया और ये कहा गया कि उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप न होते हुए भी उन्होंने नैतिकता का ध्यान रखते हुए त्याग पत्र दिया है। कोई ये ना कह सके कि वो जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए हम उनका त्याग पत्र स्वीकार कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया, एक अन्य ट्रस्टी श्री कृष्ण मोहन जी को यह कहा गया कि आप कार्यवाहक महामंत्री के रूप में काम करें।
4: राम जन्मभूमि।

0: also made the interim SIT report public. The report fixes supervisory accountability on former trust Anil Mishra, alleging that he failed to ensure effective implementation of security protocols inside the temple.
1: चंपताया जी के बारे में बोल सकता हूँ. माने चंपताया जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया. उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है. इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी आदर नहीं करते हैं, इस बात में लीजिएगा. हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं. उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस. जब त्याग पत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है. अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए ऐसी स्थिति में, और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया. उस समय हमने चंपताया जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया. ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन तीन लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को तीन नाम प्रस्तुत करेंगे. न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे. इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे. उन तीन नामों में से हम उसका चयन करेंगे. यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी.
2: स्वीकार हो गया. सोना चांदी मामला बताए थे, वो सोना चांदी सब साबित होगा, सब है, सुनिश्चित है.
0: We're tracking more updates coming in on this story at this hour. Now, a big political storm has broken out over the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. Barely hours after it accepted resignations of Champat Rai and Anil Mishra. Calling them piecemeal resignations, Congress's Pawan Khera demanded that every member of the trust be probed. Khera further said that the disability must be fixed right up to the Prime Minister Modi. Meanwhile, UP Congress Chief Rai is naming names demanding action against the Treasurer Govind Giri and Gopal Rai as well. The Samajwadi Party has also joined in, with leaders asking who will ultimately be held accountable for the trust functioning. The BJP, however, said the trust decision is its own, insisting that this is a matter of faith which should not be politicized.
3: निश्चित तौर से हम सब की जीत है, देशवासियों की जीत है, सनातनियों की जीत है, क्योंकि ऐसे चोर लोग जो भगवान का चढ़ावा का पैसा खा रहे थे, और इसमें दो ही नहीं अभी बाकी हैं, इसमें गोविंद गिरी जो उसके अच्छे बिना ट्रेजरार के जानकारी में पैसे कैसे चोर, गोविंद गिरी का इसमें इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए. और जो उसमें राव है वो गोपाल राव, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. दीपेंद्र मिश्रा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, लैब जांच बैठनी चाहिए. और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये निश्चित तौर से आज जो हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, हम लोगों की जीत है.
4: सो ऑल दोस पीपल हु आर डिफेंडिंग द एक्शंस ऑफ चंपत राय एंड द ट्रस्ट, विल दे एडमिट दैट दिस एक्सेप्टेंस ऑफ देयर रेजिग्नेशन इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट? द फैक्ट दैट देयर वॉज डेकोइटी इन द ट्रस्ट stands proved today, endorsed today by these resignations. But the fact of the matter is that people who are replacing these people do not have a very clean track record.
5: करोड़ों कंपनियों की जो भारत से रिश्ता जोड़ते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं, किसी भी दुनिया के हिस्से में रहते हैं, उनकी आत्मा को, उनके जज्बात और उनकी भावनाओं को जो ठेस और सदमा पहुंचा है, उसकी तलाशी का होना मुश्किल है.
6: बड़े पैमाने पर सोना चोरी हो गया है, चांदी चोरी हो गई है, लोगों ने इतने बड़े पैमाने में चढ़ावा जो किया है वो सब गया कहाँ? उसका पहले जांच तो करो ना. उसका ठीक जांच ही नहीं होगा। सब मिली जुली भगत है। ऐसा मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि सोमनाथ का मंदिर कितने लूटा आपको मालूम है? सोमनाथ का मंदिर गजनवी ने लूटा। गजनवी कौन था? राजा था। और राजा लूटने के लिए नहीं गया, उसके सैनिक गए होंगे, उसके लोग गए होंगे। अभी इस देश का राजा कौन है? मोदी जी, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना।
7: आज ट्रस्ट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लेकिन ये बड़ी सुखद बात है कि जितने भी निर्णय लिए गए वो सर्वसम्मति से लिए गए। चंपत जी और अनिल जी का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया और ये कहा गया कि उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप न होते हुए भी उन्होंने नैतिकता का ध्यान रखते हुए त्याग पत्र दिया है। कोई ये ना कह सके कि वो जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए उनका त्याग पत्र स्वीकार कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया, एक अन्य ट्रस्टी श्री कृष्ण मोहन जी को ये कहा गया कि आप
8: मंदिर तीर्थ का निर्माण तीर्थ का ये निर्णय जो भी होगा वो उनका अपना निर्णय है। और मैं समझता हूँ सभी चिंतित रहे, जो गणना संबंधी त्रुटियाँ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और SIT का गठन श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के पर ही उनकी FIR पर कार्रवाई भी हुई है।
0: Well, the devastating effect of the monsoon season is being felt by Mumbaikars on a daily basis, but perhaps more so over the civic mess in the city, which has seen over 13 deaths in a week. Amid the heavy downpour, a concrete slab collapsed in Mumbai's Borivali. Another tree collapsed, injuring a pregnant woman in Andheri. The toll of tree collapses in the city has been alarming, with over 1,100 trees collapsing in just the past 6 days, amounting nearly to 29% more than the year 2025. While tracking more updates coming in from Maharashtra, it was on July 6 when a tunnel on the Pune-Mumbai expressway collapsed, forcing the closure of one lane. Aftermath images show significant damage at the site. Visuals show how debris from the collapsed tunnel hit the Pune-Mumbai expressway. The 6,695 crore project, which opened just weeks ago, faced major disruption after one lane was closed. The 19-kilometer Pune-Mumbai expressway link was built to bypass the accident-prone Khandala Ghat and improve safety. Ironically, a new section of this new 6,695 crore corridor collapsed just weeks after the opening. This has now raised serious questions about the Maharashtra government and their work with this regard. In the latest, we learned that the Mumbai-bound carriageway of Pune-Mumbai expressway missing link section has reopened for traffic. Let's now take you to Tamil Nadu. A political row has erupted in Tamil Nadu over a video of TVK leader Minister Kirtana interacting with government school students. The remarks have triggered sharp criticism from the DMK. In the video, Kirtana is seen asking the questions in English, to which the minister claims she was unable to say it. Kirtana said the exchange highlights the poor learning standards in government schools. The DMK has hit back strongly, accusing Kirtana of humiliating students instead of encouraging them. The DMK has also accused the TVK of making reels for political mileage. Kirtana defended her remarks, saying that politics cannot hide the truth about the condition of government schools. She also accused the DMK government of neglecting public education in the state.
9: நீங்க ஒரு கான்வர்சேஷன்
10: இங்கிலீஷ்ல
9: என்ன
10: பண்றாங்க?
9: நீங்க லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல கேளுங்க.

0: त्याग पत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है, अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया।
1: ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन तीन लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को तीन नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे, उन तीन नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी।
2: स्वीकार हो गया, सोना चांदी मामला बताए थे, वो सोना चांदी सब साबित होगा, सब है, सुनिश्चित है।
3: We're talking more updates coming in at this hour. Now, a big political storm has broken out over the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, barely hours after it accepted the resignations of Champatrai and Anil Mishra. Calling them piecemeal resignations, Congress's Pawan Khera demanded that every member of the trust to be probed. Khera further said that the responsibility must be fixed right up to the Prime Minister. Meanwhile, UP Congress Chief Ajay Roy is now naming names, demanding action against Treasurer Govind Giri and Gopal Rao as well. The Samajwadi Party has also joined in, with leaders asking who will ultimately be held accountable for the trust's functioning. The BJP, however, said that the trust's decision is its own, insisting that this is a matter of faith and should not be politicized.
4: ये निश्चित तौर से हम सबकी जीत है, देशवासियों की जीत है, सनातनियों की जीत है, क्योंकि ऐसे चोर लोग जो भगवान का चढ़ावा का पैसा खा रहे थे, और इसमें दो ही नहीं अभी बाकी हैं, इसमें गोविंद गिरी जो उसके कोषाध्यक्ष है, बिना ट्रेजरार के जानकारी में पैसा कैसे चोरी होगा? गोविंद गिरी का इसमें इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए। और जो उसमें राव है, वो गोपाल राव, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और नीपेंद्र मिश्रा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये निश्चित तौर से आज जो हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, हम लोगों की जीत है।
5: ऑल दोज पीपल हु आर डिफेंडिंग द एक्शंस ऑफ चंपतराय एंड द ट्रस्ट, विल दे एडमिट दैट दिस एक्सेप्टेंस ऑफ देयर रेजिग्नेशन इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट? द फैक्ट दैट देयर वॉज डेकोइटी इन द ट्रस्ट stands proved today, endorsed today by these resignations. But the fact of the matter is that people who are replacing these people do not have a very clean track record.
6: एक करोड़ों उन मूल निवासी हिंदुस्तानियों की जो भारत से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं, किसी भी दुनिया के हिस्से में रहते हैं, उनकी आत्मा को, उनके जज्बात, उनकी भावनाओं को जो ठेस और सदमा पहुंचा है, उसकी तलाफी, उसकी भरपाई का होना मुश्किल है।
7: बड़े पैमाने पर सोना चोरी हो गया है, चांदी चोरी हो गई है, लोगों ने इतने बड़े पैमाने में चढ़ावा जो किया है वो सब गया कहाँ? उसका पहले जांच तो करो ना, उसका ठीक जांच ही नहीं होगा, सब मिली जुली भगत है। ऐसा मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि सोमनाथ का मंदिर कितने लूटा, आपको मालूम है? सोमनाथ का मंदिर गजनवी ने लूटा। गजनवी कौन था? राजा था। और राजा लूटने के लिए नहीं गया, उसके सैनिक गए होंगे, उसके लोग गए होंगे। अभी इस देश का राजा कौन है? मोदी जी, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना।
8: आज ट्रस्ट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लेकिन यह बड़ी सुखद बात है कि जितने भी निर्णय लिए गए वो सर्वसम्मति से लिए गए। चंपत जी और अनिल जी का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया और यह कहा गया कि उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप न होते हुए भी उन्होंने नैतिकता का ध्यान रखते हुए त्याग पत्र दिया है। कोई ये ना कह सके कि वो जांच को प्रभावित करना चाहते हैं

0: इसलिए हम उनका त्याग पत्र स्वीकार कर रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया। एक अन्य ट्रस्टी श्री कृष्ण मोहन जी को ये कहा गया कि आप कार्यवाहक महामंत्री के रूप में काम करें।
1: राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ का निर्माण तीर्थ का ये निर्णय जो भी होगा वो उनका अपना निर्णय है और मैं समझता हूँ सभी चिंतित रहे, जो गणना संबंधी त्रुटियाँ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और SIT का गठन श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के आह्वान पर ही उनकी FIR पर कार्रवाई भी हुई है।
2: On that note, slipping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: First up, breaking updates as far as Prime Minister Modi's visit to Indonesia is concerned. Indonesia President Prabowo Subianto announces that Indonesia has conferred its highest honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia Medal of Honor, upon Prime Minister Modi. So that's the big breaking update that we are getting as Prime Minister Modi is in Indonesia on a two-day visit. We're joined by Aditya Raj Kaul on this. Aditya, before that, let's go across to Prime Minister Modi's address in Indonesia.
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभावो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। फ्रेंड, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम

इनिशिएटिव के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रिजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। फ्रेंड्स, कल राष्ट्रपति प्रभोवो के साथ मुझे योग्यकार्ता में प्रमाणन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमाणन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर

सौभाग्य का विषय है। मैं 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के एक भाग्यशाली नागरिक के रूप में आपको सभी भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडोनेशिया के लोगों ने, यहां के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया है। आज की सुबह जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, जिस तरह स्वागत किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है। साथियों, आज सुबह मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान पाने का भी सौभाग्य मिला। मैं कोटि कोटि भारतीयों के प्रति इंडोनेशिया के लोगों के इस स्नेह को हृदय से, नम्रता से स्वीकार करता हूं। यह सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, साझी विरासत का है और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का है। मैं आप सभी साथियों का, प्रेसिडेंट प्रबोवो जी का, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज भारत और इंडोनेशिया इतिहास के एक अहम पड़ाव पर एक साथ खड़े हैं। इस सदी का पहला क्वार्टर बीत चुका है और अब आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंडोनेशिया की इस महान धरती पर मैं आपके समक्ष दोनों देशों के साझा विकास का विश्वास लेकर के आया हूं। मैं यह संकल्प लेकर आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर दे सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर,
इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा, समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। ये हमारे साझा भविष्य का केंद्र है। इंडिया, इंडोनेशिया और इंडियन ओशन, ये नाम हमारे आपसी जुड़ाव की गवाही देते हैं।

मैं आज समुद्र की इसी विशालता को आधार बनाकर आपसे भारत इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाई देने का आग्रह करूंगा। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। हमारा संबंध सदियों पहले नालंदा के ज्ञान से है। हमारा संबंध वायांग, नृत्य और संगीत से है। हम बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं। हम बाली यात्रा के उत्सव और उसके उल्लास से जुड़े हैं। और जब हम स्वाद की बात करते हैं तो क्रुपुक और पापड़ में कौन ज्यादा क्रंची है ये कहना कठिन हो जाता है। लेकिन ये बात तो तय है, मसाला और बुम्बू दोनों हमारे जीवन में फ्लेवर लाते हैं। साथियों, भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात ये मेरा गृह राज्य है। कहा जाता है कि सदियों पहले गुजरात से कुछ व्यापारी और सूफी संत समुद्र के रास्ते ही इंडोनेशिया आए थे। वे अपने साथ इस्लाम के विचार और इस्लाम के जीवन मूल्य भी लेकर यहां आए। आज भी गुजरात के पटोला वस्त्र यहां सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतीक है। आज भी इंडोनेशिया की बाटिक कला में उनकी छाप दिखाई देती है। और इसलिए ही राष्ट्रपति सुकर्णो ने भी कहा था, इंडोनेशिया और भारत के लोग रक्त और संस्कृति के संबंधों से जुड़े हैं। साथियों, ऐसा कितना कुछ है जो हमारे पूर्वजों ने साथ साथ जिया है। हम लोगों ने लंबे समय तक विदेशी शासन का सामना किया। हम दोनों ही राष्ट्र लगभग एक ही समय स्वतंत्र हुए। इंडोनेशिया 1945 में और भारत 1947 में। और जब स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर संप्रभुता की बात आई तो भारत संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत आवाज बना। उस दौर में आदरणीय बीजू पटनायक जी ने जो भूमिका निभाई, जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री सुतान सहरीर और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को सुरक्षित भारत पहुंचाया, वो घटना दोनों ही देशों को और करीब ले आई। ऑनरेबल मेंबर्स, एक और बात जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है वो है हमारा मजबूत लोकतंत्र और लोकतंत्र में विविधता।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्नेका तुंगल इक्का का विचार है। हम दोनों ने अपने लोकतंत्र में इस विविधता को ही अपनी एकता की नींव बना लिया है। ऑनरेबल मेंबर्स, 1950 में जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समारोह के मुख्य अतिथि भी राष्ट्रपति सुकर्णो ही थे, और जिसका उल्लेख अभी आदरणीय स्पीकर महोदय ने किया। और उस दौर में बांडुंग सम्मेलन में राष्ट्रपति सुकर्णो और प्रधानमंत्री नेहरू ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वतंत्र देशों को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। ऑनरेबल मेंबर्स, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, इंडोनेशिया ने ये रिफॉर्मेशन के जरिए दुनिया को दिखाया है। पिछले दो दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और हमारे यहां भी पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। और इसलिए मित्रों, जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं, तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है, और लोकतंत्र भविष्य बनाता है। और मुझे अटूट विश्वास है, हमारे ये लोकतांत्रिक मूल्य और साझा आकांक्षाएं भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, एक साथ आजाद देशों के तौर पर हमने जो सफर शुरू किया था, अब उस आजादी के 100 वर्ष भी हम एक साथ पूरे करने जा रहे हैं। यहां इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं, और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं, हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं, हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है, हम प्राचीन सभ्यताएं भी हैं और भविष्य के लिए नेचुरल पार्टनर्स भी हैं। इस यात्रा

में हम एक दूसरे के पार्टनर्स भी बने और स्ट्रेंथ भी बने, इसी विजन लेकर को आज राष्ट्रपति प्रबोध से मेरी विस्तृत चर्चा भी हुई है। हमारे उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सद्भाव और विश्वास है, हमें उसे अपने नागरिकों के लिए नए अवसरों में बदलना है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 25 अरब डॉलर तक पहुंचा है। भारत की 100 से अधिक कंपनियां इंडोनेशिया में काम कर रही है। निश्चित तौर पर हम साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे अभी और भी असीमित संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही है। ऑनरेबल मेंबर्स, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में भारत और इंडोनेशिया के बीच अनंत आकाश को छूने का सामर्थ्य है। उदाहरण के तौर पर स्पेस टेक्नोलॉजी, आज पूरी दुनिया स्पेस में भारत की क्षमता का लोहा मान रही है और भारत इसमें इंडोनेशिया को अपना नेचुरल पार्टनर मानता है। बियाक में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधाएं लंबे समय से भारत के स्पेस प्रोग्राम को सहयोग देती रही है। भारत ने भी इंडोनेशिया के कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान दिया है। अब इस सहयोग को और आगे ले जाने का समय है। सैटेलाइट एप्लीकेशंस में हम साथ काम कर सकते हैं। भारत इंडोनेशिया में सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करने में भी सहयोग देने के लिए तत्पर है। साथियों, हमारी समृद्ध समुद्री विरासत को सहेजने के लिए हम 5000 साल पुराने पोर्ट सिटी लोथल में नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इंडोनेशिया भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। ऑनरेबल मेंबर्स, आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, आतंकी फंडिंग और डी रेडिकलाइजेशन, इन क्षेत्रों में हम और सहयोग बढ़ाकर दुनिया में शांतिवादी ताकतों को मजबूती दे सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है और ऐसे में हम जैसे विकासशील देश समान भागीदारी और अपनी बड़ी भूमिका मांग रहे हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में
भारत का स्पष्ट मानना

करना है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को और टाला नहीं जा सकता। 2022 में इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता और 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता, दोनों ने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को वैश्विक चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया की बेबास एक्टिव की परंपरा और भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कमिटमेंट वैश्विक विषयों पर हमें साथ खड़े होने के लिए मजबूत आधार देते हैं। भारत फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का प्रबल समर्थक है। भारत इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। इसके लिए हमने आसियान को केंद्र में रखा है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आसियान सेंट्रिक है। भारत और आसियान की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत और इंडोनेशिया इस दिशा में निरंतर काम करते रहे। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे सामने एक और बड़ा अवसर है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। इस वर्ष भारत ही ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स का ये मंच और अधिक व्यवहारिक हो, अधिक संतुलित हो, ग्लोबल साउथ की जरूरतों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो, हम इसके लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज इंडोनेशिया के सभी पार्लियामेंट मेंबर्स के सामने मैं भारत इंडोनेशिया साझेदारी के एक नए युग का आह्वान करता हूं। गंगा और महाकाम की धाराओं की तरह हमारी सभ्यताओं ने सदियों से विचारों, आस्था, व्यापार और संस्कृति को जोड़ा है। आज उसी ऐतिहासिक प्रवाह को भविष्य की नई ऊर्जा देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये विजन हमारी साझेदारी को केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखता। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि, सुरक्षा और शेयर्ड प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। पहला, सिविलाइजेशनल कनेक्ट। हम अपने सभ्यतागत जुड़ाव को नई पीढ़ियों की चेतना से जोड़ेंगे। रामायण से बोरोबुदुर तक, समुद्री यात्राओं से सांस्कृतिक संवाद तक, हम अपने साझा इतिहास को भविष्य की शक्ति बनाएंगे। इसके लिए हमें भारत इंडोनेशिया सिविलाइजेशनल डायलॉग शुरू करना चाहिए। दूसरा, शेयर्ड डेवलपमेंट। विकसित राष्ट्र बनने की अपनी अपनी यात्राओं में
भारत और इंडोनेशिया अटल साझेदार रहेंगे। इंडोनेशिया का एमास विजन और भारत का विकसित भारत संकल्प एक दूसरे को गति देंगे, एक दूसरे को शक्ति देंगे और हमारे लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज का निर्माण करेंगे। तीसरा, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। हम डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देंगे। हम अपनी नेशनल कैपेसिटीज को मजबूत करेंगे। आतंकवाद, साइबर थ्रेट्स, समुद्री चुनौतियां और इमर्जिंग सिक्योरिटी रिस्क, इसका हमारा उसके बिलीफ असाइनमेंट में हम मिलकर सामना करेंगे। भारत और इंडोनेशिया का स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी का मजबूत आधार बनेगा। चौथा, मैरिटाइम प्रॉस्पेरिटी। दो महान समुद्री राष्ट्रों के रूप में हम अपनी शेयर्ड मैरिटाइम ज्योग्राफी को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में बदलेंगे। साबांग से ग्रेट निकोबार तक, मलक्का गेटवे से इंडो पैसिफिक तक हम कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ब्लू इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड रेजिलियंस में नए अवसर पैदा करेंगे। पांचवा, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। हम ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को और मजबूत आवाज देंगे। हम ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करेंगे जहां डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो और ग्लोबल गवर्नेंस अधिक न्यायपूर्ण और रिप्रेजेंटेटिव हो। साथियों, भारत और इंडोनेशिया मिलकर मानवता के पांचवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी साझेदारी केवल दो देशों का संबंध नहीं है, यह इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी, ग्लोबल साउथ की शक्ति और विश्व के शेयर्ड फ्यूचर में विश्वास का संकल्प है। आइए अपनी ऐतिहासिक मित्रता को नए दौर में ले जाएं। आइए गंगा महाकम विजन को मिलकर साकार करें। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत में तुलसीदास जी ने लिखा था, जाने बिनु न होई प्रतीत, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। यानी जब तक लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक उनके बीच अपनापन नहीं बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि इंडोनेशिया में एक कहावत है और इसका अर्थ भी यही है, ताक केनाल माका ताक सायांग। इसलिए हमने तय किया है, हम एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला और तेज करेंगे। आज शाम मैं और राष्ट्रपति प्रबोवो यहां रह रहे भारतीयों से मिलेंगे। कल राष्ट्रपति प्रबोवो और मैं प्रभानन भी जाएंगे।
हम इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के

0: when others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
1: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's that mean?
0: The show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's that mean.
0: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
2: Buy. Sell. Hold. Hold.
3: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday.
4: Welcome back. You're watching NDTV Newsroom, and let's now get you the latest in the Ram Mandir donation theft case. Now, the SIT is continuing to investigate all aspects of the case, and now the expenses that were incurred by the Ram Temple Trust will also be scrutinized by the investigators. Sources indicate that an accounting will be conducted for the 125 crore that has been spent by the trust. Also, according to sources, six of the eight people who have been arrested and accused began stealing currency within 2 to 3 months of joining, to 2 to 3 months of getting this job of counting the donation. They began stealing. The accused revealed that they had stolen approximately 2 to 3 crore rupees so far. Also, according to sources, Tinu Yadav, who was, remember, a close aide of the trust head, is considered the key player in the donation theft case. The investigation has revealed that Tinu was initially associated with the temple as a driver for Champat Rai, who was the general secretary of the Ram Temple Trust. Later, he also rented his personal vehicle to the trust. Sources say accused Avinash has also revealed that he spent a large amount of stolen donations on his family, friends, as well as personal hobbies. Let's listen in to what is being said.
5: The message that went out from the trust yesterday, the three-page press release, in your assessment, is that enough? Because many people are saying that maybe the trust could have probably done more, given the scale of and the nature of the allegations.
6: Yes. Whatever more is required, we are going to do in our next meeting on 22nd of July. Mind well, the SIT report is not final. It is mid-report, and the final report is expected. When the final report we shall get, we shall think it over and we shall take the proper steps.
5: What could be those proper steps that if the meeting on the 22nd of July when the SIT report will come in, what could be those kind of steps? And more importantly, how soon could the organizational structure be finalized?
6: Some steps we have already started. We have decided to appoint one CEO, one competent person to watch everything here. And we have also decided that everybody who is appointed here must be taken interview, and we must know his biodata well. People who are doing their work in Ram Mandir, anybody, he must be checked, and we must go by bureaucratic corporate discipline.
5: Do you think it is the weakness of the processes that actually led to the kind of and the scale and the nature of these allegations that have come in? Or do you think there were larger lapses that now need to be investigated in greater detail?
6: How larger it is to be decided by SIT, and thereafter we shall think it over. But the lapses were there. Had there been no lapses, such a fraud must not have happened. But it happened, and the lapses were the reason.
7: राजी ने इसलिए इस्तीफा दिया कि यह आशंका कहीं से व्यक्त की जा रही थी कि उनके महामंत्री रहते हुए जांच प्रभावित हो सकती है. वो किसी गवाह को कुछ कहें, किसी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो, तो ये निष्पक्ष जांच कैसे होगी? इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया. इस भावना का सम्मान करके ट्रस्टियों ने स्वीकार कर लिया। अब अगर ये सारी जांच से यह साबित होता है कि चंपत जी अनदेखी के अलावा और किसी बात के दोषी नहीं है, और ऐसा होना संभव है, तो फिर उतना ही रह जाएगा, तब विचार करेंगे। अभी तो इस्तीफा किसी निश्चित समय के लिए स्वीकार नहीं हुआ है। इस्तीफा स्वीकार हो गया है, वो अभी ना महामंत्री हैं ना ट्रस्टी हैं।
8: अच्छा सर, एक सवाल और उठता है, विपक्ष के लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि एसआईटी की ये जो जांच है ये आंख में धूल झोंकने के समान है, सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष कमेटी गठित करके फिर इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए।
7: करवा लें, हमें क्या आपत्ति है? उनको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा ना। अगर वो केवल मीडिया को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे, तो आप तो उसको अपॉइंट, मीडिया तो अपॉइंट नहीं कर सकता। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करें, करवा लें। वैसे कुछ और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन किया है और ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज मॉनिटर करे। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, अगर वो किसी सिटिंग जज को मॉनिटर करने के लिए लगाते हैं या रिटायर्ड जज को लगाते या सीबीआई को लगाते, जिसको भी लगाना चाहें वो लगा लें। ना कुछ छुपाने को है ना कोई बचाने को है।
4: So as the investigation continues in the Ram temple donation theft case, however, the politics has also been raging. Remember, the opposition has been attacking the BJP over this entire issue, and UP Chief Minister Yogi Adityanath has been hitting back as well. In fact, today Yogi Adityanath slammed the Congress and Samajwadi Party, saying that both these parties had questioned the existence of Ram and Krishan earlier. Congress's Pawan Khera demanded that every member of the trust be probed as well. Khera further said that responsibility must be fixed right up to Prime Minister Modi. The Samajwadi Party also joined in, with leaders asking who will ultimately be held accountable for the trust's functioning. The BJP, however, said that the trust's decision is its own, insisting this is a matter of faith that shouldn't be politicized.
9: भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं?
10: अरे इस्तीफा क्यों, जेल में क्यों नहीं डाल रहे? इंटरोगेट करो पहले तो, जैसे पुलिस रिमांड लेती, रिमांड लो, जांच करके ये पता लगाओ कि चंपत राय या दूसरे लोग, इनके तार कहां जुड़े, कहीं दिल्ली से तो तार नहीं जुड़े, पैसा कहां जा रहा था, वो क्या अपने घर में छुपा के रखेंगे, कहीं तो जा रहा होगा, किन से जुड़े, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस पूरे खेल के पीछे हो।
4: All right, with that, time for us to slip into a short break. Coming up on the other side, it's Congress versus Congress in Punjab. Stay with us.

0: Tragedy strikes Wayanad again.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: सबका राजा प्योर मसाला।
13: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
14: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
13: The show that sets the prime time agenda.
14: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
13: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
15: Buy. Sell. Hold. Hold.
16: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.
13: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life. The show that sets the prime time agenda.
14: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
13: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
17: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
18: Really?
17: Fashion that made you gag.

और एक अजब संयोग बना है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। मैं जब भी इंडोनेशिया आया हूं, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है। पहली बार 18 में जकार्ता में कार्यक्रम हुआ था, फिर हम 2022 में बाली में मिले थे, और अब 2026 में फिर से जकार्ता में ही संवाद हो रहा है, और तीनों बार इंडोनेशिया में फुटबॉल की गूंज रही है। लेकिन साथियों, इंडोनेशिया में यहां इन तीनों कार्यक्रमों का मैन ऑफ द मैच एक ही है। इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मैन ऑफ द मैच है। ये आपने इतना भव्य आयोजन किया है, आप भव्य भारत की जीती जागती तस्वीर बने हैं। यहां इतने सारे लोग आए हैं, और साथियों, इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं, इस बार मेरे साथ मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो भी मेरे साथ आए। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उनके स्नेह के लिए, उनके शब्दों के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सलेंसी, यू आर अ ट्रू फ्रेंड ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। साथियों, कल जब मैंने इंडोनेशिया के आकाश में प्रवेश किया और जब यहां पहला कदम रखा, तब से लेकर अभी तक जो अपनापन, जो प्रेम मुझे इंडोनेशिया के लोगों से मिला है, उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। प्रेसिडेंट प्रबोवो द्वारा अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने के लिए आना एक यादगार अनुभव रहा। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, उसकी एक झलक आज मुझे राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दी। यहां के लोगों का उत्साह, बच्चों की मुस्कान, युवाओं का जोश, सब कुछ अवर्णनीय था, अद्भुत था। मैं जहां जहां गया, जिस किसी से मिला, हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता साफ दिखाई दी। वैसे मैंने देखा कि हां, भारत का गाना
कुछ कुछ होता है, बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इसे इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। मैं इस मंच से भी राष्ट्रपति प्रबोवो, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 प्लस 6 इज इक्वल। और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1 प्लस। उस समारोह में प्रेसिडेंट प्रबोवो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। उस यात्रा के दौरान हमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला, लेकिन उस यात्रा की एक बात मैं आज खास तौर पर याद करना चाहूंगा। और उस बात को बड़े गौरवपूर्वक आज राष्ट्रपति जी ने यहां भी बड़े डंके के चोट पर बड़े शान से उल्लेख किया। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने उस समय कहा था और आज फिर से कहा, और आपने उस समय भी कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। आपकी उस बात, एक बात ने आज भी मैंने देखा सबसे ज्यादा तालियां उसी समय पड़ी। और भारत में भी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल अपने जीत लिया था। उस एक वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया था। मैं आपकी ही उस बात को आगे बढ़ाता हूं। जिस डीएनए की बात आपने की थी और जिस डीएनए की चर्चा आज आप सबके लिए कर रहे थे, वो डीएनए आखिर है क्या? वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। वो डीएनए साझी विरासत से बना है। वो डीएनए
साझा स्मृतियों से बना है। वो डीएनए उन समुद्री हवाओं से बना है जिन्होंने हजारों वर्ष तक हमारे जहाजों को एक दूसरे के तटों तक पहुंचाया। साथियों, भारत इंडोनेशिया संबंधों का डीएनए उन संतों और बौद्ध भिक्षुओं से बना है जिन्होंने ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा, या उन उद्यमियों से बना है जिन्होंने केवल मसालों का व्यापारी नहीं किया बल्कि संस्कृतियों के सेतु भी बनाए। यह डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा। भारत इंडोनेशिया के संबंधों को इंडोनेशिया के जिंदा दिल नागरिकों ने, यहां बैठे अनेक परिवारों ने सींचा है, संवारा है, हमेशा समृद्ध किया है। साथियों, दुनिया में अक्सर दो देशों के रिश्ते एग्रीमेंट्स और एमओयू से आगे बढ़ते हैं। कई देश रणनीति से जुड़ते हैं तो कुछ ट्रेड से नजदीक आते हैं, लेकिन भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है। साम्राज्य आए, साम्राज्य चले गए, समुद्री रास्ते बदले, दुनिया की राजनीति बदली, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच यह सूत्र हमेशा हमेशा कायम रहा। और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, आज दुनिया कनेक्टिविटी की बात करती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो इस कनेक्टिविटी को जीकर दिखाया था। आज दुनिया की सप्लाई चेन्स भरोसे के अभाव में टूट रही है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया ने उस समय सप्लाई चेन का भरोसा जिंदा किया था जब ग्लोबल सप्लाई चेन की चर्चा भी नहीं थी। और मुझे खुशी है कि आज भारत और इंडोनेशिया उसी भरोसे की पूंजी के साथ मिलकर एक नया फ्यूचर लिख रहा है, और इस शानदार फ्यूचर के बहुत बड़े लाभार्थी आप सभी लोग हैं। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के जमाने में कॉलेब की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया तो सदियों से कोलैब करते आया थे। इंडोनेशिया के कुताई में पुराने संस्कृत शिलालेखों की वजह यह कोलैब ही रहा।
नालंदा यूनिवर्सिटी में यहाँ के स्कॉलर्स के पहुंचने की वजह ये कॉलेज ही तो था। कटक का बाली यात्रा उत्सव हो, महान नदी में केले के तनों से बनी नावों को चलाने की परंपरा हो, वयांग कुलित में महाभारत का मंचन हो, वैशाख पिलग्रिमेज हो या देवी श्री की पूजा हो, हर परंपरा में भारत और इंडोनेशिया का ये कॉलेज साफ साफ दिखाई देता है। साथियों, भारत इंडोनेशिया के कॉलेज का ये इतिहास जितना पुराना है उतना समृद्ध भी है। सुमात्रा का मुआरो जंबी प्राचीन काल में नालंदा का एक सिस्टर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। मुझे बहुत संतोष है कि अतीत की उसी ट्रेडिशन को आज हम रिवाइव कर रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं, अब नालंदा यूनिवर्सिटी नए अवतार में सामने आई है और वहां इंडोनेशिया के भी अनेक स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। यानी 21वीं सदी में अतीत की प्रेरणा से हम दोनों देश एक नए भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। साथियों, भारत और इंडोनेशिया दिल से भी करीब है और भूगोल से भी निकट के पड़ोसी है। भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया के आचे की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। सोचिए, भारत के एक द्वीप से इंडोनेशिया भारत के राज्यों से भी ज्यादा करीब है। इंडोनेशिया में आने वाले हर भारतीय को यहां अपनापन महसूस होता है। यही कारण है कि वर्षों से हमारे दोनों देश ट्रेड, ट्रेडिशन, टूरिज्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे रिश्तों की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब भारत नए पोर्ट्स बना रहा है, नए शिप्स पर काम कर रहा है, नए सी रूट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, नई पार्टनरशिप के माध्यम से मैरिटाइम ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे हैं इंडोनेशिया हमारे लिए फेवरेट फ्रेंड बनकर हमारे साथ उपस्थित है। साथियों, इंडोनेशिया हो या फिर भारत, हम दोनों ही देश विकास के लिए अधीर हैं और वाकई बहुत अधीर है। हमारे पास न रुकने का मौका है न थमने का। इंडोनेशिया की प्रगति के बारे में यहां अभी कुछ भारतीयों ने बताया है। हिंदुस्तान से मैप के लिए भारत की प्रगति अनेक गाथाएं लेकर आया हूं। आप सुनना चाहते हैं ना?
जरा आवाज जोर से आए पता चल।

आपको भारत की एक से बढ़कर एक उपलब्धियां सुनने मिलेगी, मिलती है ना, बताइए तो। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं, हमने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, भारत ने आज जो ग्रोथ हासिल की है ये 140 करोड़ लोगों के सपनों की ग्रोथ है। ये करोड़ों भारतीयों के एस्पिरेशंस की ग्रोथ है। आप सभी भी उस सपने से अलग नहीं है। इंडोनेशिया में रहने वाला हर एक भारतीय उस सपने का साझेदार है। साथियों, भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन। आज भारत के गांव देहात से लेकर शहरों तक का नागरिक एस्पिरेशन से भरा हुआ है। हर किसी में ये आत्मविश्वास आया है कि हां, हम ये सफलता हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं कि हर इंसान के लिए अपने घर का सपना कितना बड़ा सपना होता है। और भारत का आंकड़ा सुनिए, भारत में पिछले 10-12 साल में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सरकार ने पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इतने तो कई देशों में कुल घरों की संख्या भी नहीं होती है। साथियों, जब लोगों को अपना घर मिलता है, एक सम्मानजनक जिंदगी मिलती है, तब इन करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशंस को गति मिलती है। ड्रीम्स मोशन में आते हैं। साथियों, मैं आपको भारत में सोशल सिक्योरिटी कवर का दिलचस्प आंकड़ा दूंगा। 12 साल पहले भारत में 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी कवर था। आज करीब 100 करोड़ भारतीय सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ गए।

और अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे। भारत में एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत साल में सिर्फ 20 रुपये में, एक साल में 20 रुपया, सुनाई देता है ना, एक साल में सिर्फ 20 रुपये के प्रीमियम पर, 20 रुपये के प्रीमियम पर 2,00,000 रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। यानी एक महीने की एक कॉफी जितना भी खर्चा नहीं है। दुनिया में ये कहीं मिले न मिले, लेकिन ये भारत में मिल रहा है और इससे भारत के करीब 60 करोड़ लोग कवर है। साथियों, एक दूसरी योजना भी है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना में हर रोज के करीब एक दिन का 1.5 रुपया, हर रोज के करीब 1.5 रुपये के प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। एक रोज के सिर्फ 1.5 रुपया, यानी एक कॉफी भी 1.5 रुपये से ज्यादा कीमत लगती है। और भारत में अभी 28 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हैं। साथियों, सरकार की इन दोनों योजनाओं के तहत अब तक करीब 22,000 करोड़ रुपये का क्लेम लोगों को दिया जा चुका है। 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ रुपीज लोगों के जीवन में जब संकट आया तो सरकार उनकी साथी बनकर उनके साथ खड़ी रही है। साथियों, आज भारत में एक और ऐसी व्यवस्था बनी है जो अभूतपूर्व है, शानदार है। ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था है जिसमें बिना लीकेज लाभार्थियों तक पूरा पैसा पहुंच जाता है। अभी एक सज्जन आए थे, वो पूछ रहे थे कि बंगाल के लिए मेरा विजन क्या है। ये विजन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नो लीकेज, नो कट की। और ये पैसे भी सीधे उनके बैंक अकाउंट में। आप कल्पना कर सकते हैं, बीते 12 साल में, ये आंकड़े जरा आपको चौंकाने वाले हैं, बीते 12 साल में 50,00,000 करोड़ रुपये, 50 ट्रिलियन रुपीज की मदद डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। 50,00,000 करोड़ रुपये। साथियों, जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने का आरंभ करते हैं।

0: साथियों, मैं आपको एक और डेटा देता हूं। आपने ये सुना होगा कि दुनिया की जितनी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होती है उसकी करीब 50% 50% अकेले भारत में होती है। दुनिया की 50%। आज भारत में हर दिन 75 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, 75 करोड़ से अधिक। यानी डे टू डे लाइफ में कैश लेकर चलने की मजबूरी नहीं रही है। और हालात तो ये हो गए हैं कि लोग डेबिट कार्ड का पासवर्ड भूलने लगे हैं, बैंक एटीएम का पासवर्ड भूलने लगे हैं, बस यूपीआई से ही, मोबाइल फोन से ही काम हो रहा है। साथियों, जब सपने बड़े होते हैं तो सरकार के काम करने की स्पीड भी उतनी ही तेज हो जाती है। आज भारत में आप जाएंगे तो चारों तरफ हाईवे और एक्सप्रेसवे बनते हुए दिखाई देंगे। 12 वर्ष में हाईवे निर्माण की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है। ये भी दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट है। इस दौरान भारत में एक्सप्रेसवे की लंबाई 100 किलोमीटर से बढ़कर 3000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। और भारत के जो ये बड़े सपने हैं, इसको भारत का युवा ड्राइव कर रहा है। 12 साल में ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटी की संख्या 11 से बढ़कर 50 से अधिक हो चुकी है। आज भारत के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में पेटेंट फाइल कर रहे हैं, इनोवेशन को गति दे रहे हैं। इसलिए तो आज भारत 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स वाला देश है, 2 लाख से अधिक, करीब 125 यूनिकॉर्न्स वाला देश है। और तभी तो मैं कहता हूं कि भारत सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, भारत में बिलियन प्लस ड्रीम्स इन मोशन है। साथियों, हम भारतीयों को ताजा खाना जरा ज्यादा पसंद होता है, गर्मा गर्म हो तो बात ही कुछ और होती है। इसलिए मैं भारत के सामर्थ्य का एक सबसे ताजा उदाहरण देता हूं, गर्मा गर्म। इंडोनेशिया आने से 2 दिन पहले यानी 4 जुलाई को मुझे एक ही दिन में देश को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सौंपने का अवसर मिला। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, 4 जुलाई की। 1 ट्रिलियन रुपीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक ही दिन में भारत इस स्केल पर काम कर रहा है। साथियों, भारत ने 4 जुलाई को एक बहुत बड़ी रिफाइनरी शुरू की है और इस रिफाइनरी में जो मटेरियल लगा है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। इसमें जितना स्टील लगा है उससे 40 नए एफिल टावर बन जाते हैं। इतना स्टील लगा है कि 5 बुर्ज खलीफा तैयार हो जाते हैं। इस रिफाइनरी के निर्माण में इतनी लंबी केबल यूज हुई है जिससे पूरी धरती के 2 चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे ही अभियानों के कारण आज भारत रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में दुनिया में टॉप 4 देशों में पहुंच चुका है। साथियों, 4 जुलाई को ही इस रिफाइनरी के अलावा जोधपुर में एक शानदार भव्य एयरपोर्ट शुरू हुआ। छोटे छोटे शहरों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए की उड़ान योजना लॉन्च की गई। जयपुर के मेट्रो नेटवर्क को इसी दिन विस्तार मिला और इसी दिन भारत के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट ने भी काम शुरू कर दिया। यानी एनर्जी से लेकर कनेक्टिविटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग तक भारत अनस्टॉपेबल है। साथियों, आज का भारत सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा, बल्कि हर मित्र देश के सपनों के साथ है। भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलता है, इसलिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर नए अवसर बनाता है और उन्हें भी नए अवसरों से जोड़ता है। भारत की आत्मनिर्भरता इंडोनेशिया के लिए, पूरे आसियान रीजन के लिए भी एक मल्टीप्लाइंग फोर्स है। आप हेल्थ सेक्टर को ही लीजिए, आज दुनिया के हर पांच में से एक जेनेरिक मेडिसिन भारत में बनती है। यूनिसेफ की जरूरत की लगभग 60% वैक्सीन भारत से आती है और इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को भी होता है। हम अपने दोस्तों के लिए जो कुछ भी कर पा रहे हैं उस पर हमें बहुत गर्व है। साथियों, मैंने आपको भारत की इतनी बातें बताई हैं, अब आपको मेरा एक और काम करना है। करोगे? करोगे? आपको अपने इंडोनेशियन फ्रेंड्स को भारत के बारे में बताना है। बताओगे? और उन्हें भारत आने के लिए आग्रह करना है। अब तो जाकार्ता से मुंबई के लिए, बाली से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए इतनी सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, इससे भारत आना जाना बहुत आसान हो गया है। साथियों, भारतीय समुदाय में भी जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, उनको भी आपको भारत के बारे में बताना है। इंडोनेशिया में इंडियन कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज को शुरू किया गया है। इसमें यहां के बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कर्टेन रेजर इवेंट में ही मुझे आपका बहुत उत्साह दिखा है। 6th एडिशन में हमने एग्जाम फॉर्मेट को छोड़कर अब इस पूरे कंपटीशन को गेमिफाइड किया है। मेरा आग्रह है कि आप सब युवा साथी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और सोशल मीडिया पर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। साथियों, भारत और इंडोनेशिया जितने इतिहास से जुड़े हैं उतना ही हमारा फ्यूचर भी शेयर्ड है। हमारे अवसर साझा है, हमारी चुनौतियां साझी है। जब योग दिवस आता है तो हम साथ योग करते हैं और जब सुनामी जैसा संकट आता है तो हम साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। हम दोनों देशों के बीच का भरोसा, हम दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी ताकत है और हमें इसे मिलकर निरंतर मजबूत करना है। आप सभी भारत इंडोनेशिया के प्रॉस्परस फ्यूचर की साझा कड़ियां हैं। अपने इस रोल को और बड़ा करना है, इसी भाव के साथ एक बार फिर मैं प्रेसिडेंट और मेरे परम मित्र प्रभो आपका, इंडोनेशिया की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत और इंडोनेशिया मित्रा सेलामान्या, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं राष्ट्रपति जी के साथ उस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूं और कल तारीख क्या है? तो हमारा नाता भी इतना मजबूत है और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मोदी जी, त्रिमा कासी। Thank you very much, Honorable Prime Minister, for your heartfelt and moving message for all of us.
2: Well, that's the Prime Minister there, Indian Prime Minister Narendra Modi, ending his speech at a public event, at a community event in Jakarta, Indonesia. And he has also spoken about the consistent bilateral ties between Indonesia and India, saying that Indonesia remains India's favorite friend. He's also talked about the importance of civilizational and cultural ties between the two countries. And he has said that
1: on behalf of the Indian diaspora and friends of India in Indonesia, we extend our sincere gratitude to Their Excellencies Bapa Prabowo Subianto and Shri Narendra Modi ji for their kind and inspiring words. Please join us in thanking them once again.
2: The Prime Minister there.
1: We wish Modi ji a wonderful
2: just finished
1: visit
2: his community event. He addressed the Indian diaspora there, and he spoke about India and Indonesia being friends, not just civilizationally, but also geographically. He's talked about long-lasting cultural ties between the two countries. And he said that the distance between the two countries is just approximately 150 kilometers, and that the bilateral ties, the cultural ties between the two countries will remain consistent even as there are geopolitical clouds and changes around the entire region. With that, it's time for a short break. More news and updates. Okay, we have some breaking news right now. There's a video that has come up in Maharashtra in which the Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli. KDMC hospital staff halted work after Shiv Sena leader assaulted doctors and female nurses. A horrific incident there of a Shiv Sena corporator assaulting doctors that has emerged now. There's a video, there's a visual evidence of something like this. FIR process, investigation process is underway, is what we understand from our reporters. My colleague Anuj Raite joins us with more details on this. Anuj, help us understand where has this happened, and also what can we see from what can we comprehend from what we see in the visuals that is being shown now?
3: This incident occurred at a government hospital, a KDMC, that is a Kalyan Dombivli Municipal Corporation Hospital in Shastri Nagar in Dombivli. A woman who was expecting a kid was admitted in that particular hospital, but later when the doctor suggested that she has to be the delivery has to take place in NICU, that is a neonatal intensive care unit, that is when the hospital staff told the doctor that they do not have empty beds for NICU because of occupancy issues. And that is when the doctor suggested politely, from what we've been told, the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: We are over, Jimmy.
10: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF sambhal lega. Aap apna dekh lo.
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
12: वाह मामा क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।
14: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
15: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: We are over, Jimmy.
9: Hey. लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसो हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: सबका राजा आग प्योर मसाला।
13: We are over, Jimmy.
14: Hey. लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
15: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
16: दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड यू नो ज्यूरी लाइनअप, यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज।
17: द एमिनेंट ज्यूरीज हु आर हियर एंड द that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
18: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
15: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
19: They say morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the right insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12. Your edge for every move.
20: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
21: Really?
20: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
8: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
22: Literally go.
23: की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं, हमने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है. रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा प्योर मसाला।
9: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
12: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream.

0: इमरजेंसी में करनी पड़ेगी, और बेबी के लिए एनआईसीयू लगेगा ऐसा बोला था। और वी हैव 10 बेडेड एनआईसीयू एट अवर हॉस्पिटल, बट ऑल बेड्स वेर ऑक्यूपाइड एंड पेशेंट एंड रिलेटिव्स वेर टोल्ड टू, उनको ऐसा एडवाइस किया था कि अगर बेबी को एनआईसीयू लगेगा तो अपने पास नहीं है तो वी हैव अवर रेफरल सेंटर एट सायन हॉस्पिटल, तो वहां लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा था सोचने के लिए। तो उसके बाद एक कॉल आया था कि रिलेटिव ने वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के हाथ में देने की कोशिश की थी, तो गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि हमने आपको जो बताया है अभी तक, जो जानकारी दी है वही हमें बताना है, तो अलग से फोन पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके 5-10 मिनट के बाद ही यहाँ पे जो हमारे नगर सेवक है और कोई उनके साथ लोग आए थे, और वो जो डिलीवरी बॉय है वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हमारे आरएमओ और हमारे स्टाफ, हमारे मावशी, वो सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो इमिजिएटली कुछ बात स्टार्ट करके उन्होंने अपने डॉक्टर्स को मारना शुरू किया था। वो हम लोग वीडियो से, हम लोग ने जो देखा है वही बता रही हूँ। और जो हमारे डॉक्टर थी उन्होंने भी कुछ बोलने की कोशिश की, तो उनके हाथ पे ये झटका लगा के उनकी उनकी फोन भी उस समय हाथ से गिर गई थी। सब लोग काफी डरे हुए थे, हमारे स्टाफ भी कोशिश कर रहे थे, तो वो उसमें डॉक्टर उनके ऊपर भी गिर गए। जो हमारी मावसी खड़ी थी पीछे, तो उनको भी 2-3 बार डॉक्टर को मारा गया था, और मेरे डॉक्टर
1: जी
0: आरएमओ थे उनको।
1: डॉक्टर डॉक्टर
0: ये
1: दीपा, इस वीडियो
0: सब
1: में जो
0: वीडियो,
1: दिख रहा है, व्हाट वी आर एबल टू क्लियरली सी इज दैट अ लेडी डॉक्टर, एटलीस्ट टू लेडीज इन दैट वीडियो आर अटैक्ड फिजिकली, फिजिकली उन पर असॉल्ट हुआ है। रमेश मात्रे जो हैं कल्याण डोंबिवली के कोऑपरेटर, रूलिंग शिंदे सेना के कोऑपरेटर हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। बट वॉट इज द रिएक्शन अमंग द डॉक्टर्स? दे हैव गॉन ऑन अ स्ट्राइक राइट नाउ, वॉट आर दे टेलिंग यू? किस टाइप का अटैक था? एक एक तो ये कैमरा पे पूरा रिकॉर्ड हुआ है, व्हाट आर दे सेइंग टू यू मैडम?
0: नहीं, अवर ऑल हॉस्पिटल्स केडीएमसी, वी हैव 3 हॉस्पिटल्स, एवरीवन इज, वी कैनॉट से वी आर ऑन स्ट्राइक, बट वी हैव शट डाउन द रूटीन सर्विसेज, बट वी आर डूइंग इमरजेंसी सर्विसेज। वी हैव अवर 27 हेल्थ सेंटर्स ऑल्सो, देयर ऑल्सो वी हैव स्टॉप अवर वर्किंग एट प्रेजेंट, वी आर डूइंग ओनली इमरजेंसी वर्क। द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आवर कल्याण ब्रांच एंड डोंबिवली ब्रांच, दे हैव फुल्ली सपोर्टेड अस, एंड हम सब लोगों ने मिलके, हमारे आयुक्त सर जो श्री अभिनव जी गोयल सर है उनको भी मिले हैं, हम सब लोग, ऑल अवर सिस्टर स्टाफ, डॉक्टर्स और अदर पैरामेडिकल स्टाफ ऑल्सो, एवरी वन इज डूइंग ओनली इमरजेंसी वर्क।
1: वॉट आर द डॉक्टर्स टेलिंग यू?
0: और
1: डॉक्टर्स
0: अभी
1: एंड
0: ये जो,
1: नर्सेज हु आर असॉल्टेड इन दिस मैनर मैडम, वो उनको
0: हाँ
1: वो आपको क्या कह रहे हैं अबाउट दिस हॉरिबल इंसिडेंट?
0: नहीं, हमने सबका स्टेटमेंट लिया है इसके बारे में, और जो रात में भी हम लोग कल पुलिस स्टेशन रात में भी थे, आई वॉज देयर विद देम, और अभी हम लोग पुलिस स्टेशन में ही है, और FIR का हम दर्ज कर रहे हैं।
1: इज द पुलिस कोऑपरेटिंग इन रजिस्टरिंग एन FIR? FIR क्या दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है?
0: इन प्रोसेस, वी आर इन प्रोसेस।
1: आर यू फेसिंग एनी रेजिस्टेंस मैडम? बिकॉज ये रमेश मात्रे जो हैं उनके खिलाफ दो तीन पुराने भी क्रिमिनल केसेस हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है उसके खिलाफ अभी तक।
0: तभी के तभी वो उस टाइम में जो भी हुआ होगा, तभी वहाँ उस टाइम भी जो अपने सीनियर्स रहते हैं या फिर उनको बताया गया था ये सब उसके बारे में, और अभी इमीडिएटली इनका ही था, या पहले भी 1-2 बार हमारे डॉक्टर ने FIR किए हुए हैं।
1: तो ये कैसे हो सकता है डॉक्टर दीपा? एवरीवन इज शॉक्ड व्हेन दे सी दिस वीडियो ऑफ अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अ कॉपरेटर, वॉकिंग इन टू अ हॉस्पिटल एंड असॉल्टिंग डॉक्टर्स, दैट टू अ लेडी डॉक्टर इन दिस मैनर। वी आर ऑल शॉक्ड वॉचिंग दिस मैडम, ये कैसे हो सकता है ये?
0: Yes, everyone was shocked and our staff was literally crying after seeing this CCTV footage, because yesterday what we heard from there from them, and now after seeing the total CCTV footage, it was really shocking.
1: What is your demand from the government, madam? Abhi tak FIR is in the process. Do you feel that the government needs to take action immediately? You are, after all, healthcare workers, doctors who have been assaulted by a ruling party cooperator.